0: मौजूद सामिन इकराम, अस्सलाम वालेकुम। यह सदाए तुर्की है, हम आपको खुश आमदेद कहते हैं। आज 18 मई बरोज़ पीर है। इस वक्त अंकारा के मकामी वक्त मुताबिक सपहर के 3, पाकिस्तान के वक्त मुताबिक शाम के 5, भारत के वक्त मुताबिक शाम के 5:30 और बांग्लादेश के वक्त मुताबिक शाम के 6 बजे हैं।
1: सामिन, आप हमारे नशात को शॉर्ट वेव्स 16 मीटर बैंड 17,580 किलोहर्ट्ज़ के अलावा तुर्कसेट 3A ईस्ट और 4A वेस्ट समेत हमारी मोबाइल एप्लीकेशन पर भी सुन सकते हैं।
0: आज हमारे प्रोग्राम में अलल तरतीब खबरें होंगी, उसके बाद सिलसिलेवार प्रोग्राम अनातोलिया के शाहकार, आसमानी कहानियां और अनातोलिया की इब्तदाई तहजीब पेश किए जाएंगे।
1: सामिन, हमारे नशात इस पर मामूल 1 घंटे तक जारी रहेंगे। आज आपकी मेज़बान है मिसबा शाहिन
0: और सगीर अहमद,
1: और स्टूडियो में हमारे साथ तकनीकी तआवुन कर रहे हैं एरसिन आयत एमिर।

उन पर गुफ्तगू की, जबकि ईरानी मीडिया ने रिपोर्ट किया है कि अमेरिका ने तेहरान के पेशकरदा एजेंडे के ताज़ा जवाब में कोई ठोस रियायत नहीं दी। फार्स न्यूज़ एजेंसी का कहना है कि वाशिंगटन ने एक 5 नुकाती फहरिस्त पेश की, जिसमें मुतालबा किया गया है

0: शुरू रखा है। ईरानी सराय एबलाग ने कहा है कि अमरीका वो रियायतें हासिल करना चाह रहा है जो अब इसे मुसल्ला मुकाबलों के दौरान हासिल नहीं हो सकी, जिसके नतीजे में सूरत हाल बंदिश की तरफ जा पहुंची।
1: सऊदी अरब ने कहा है कि उसके दिफाई फिजाई निज़ाम ने इराक की तरफ से मुल्क की फिजाई हदूद में दाखिल होने वाले 3 ड्रोन्स को रोककर तबाह कर दिया है। वजारत दिफा के तर्जमान तुर्की अलमालिकी ने बताया कि इतवार की सुबह इराकी इलाके से सऊदी फिजाई हदूद में दाखिल होने के बाद इन ड्रोन्स को मार गिराया गया। अलमालिकी ने इस बात पर जोर दिया कि ममलिकत मुनासिब वक्त और जगह पर जवाब देने का हक महफूज रखती है। उन्होंने कहा कि सऊदी अरब ममलिकत की खुद मुख्तारी, सलामती और अपने शहरियों और रिहायशियों के तहफ़ की खिलाफ वर्जी की किसी भी कोशिश का जवाब देने के लिए तमाम ज़रूरी ऑपरेशनल इकदाम करेगी और उन पर अमल दरामद करवाएगी। फरवरी में अमरीका और इसराइल की जानब से ईरान के खिलाफ हमलों के बाद से इलाकाई तनाव में इजाफा हुआ है। तेहरान ने जवाब में इसराइल के साथ साथ खलीज में अमरीकी इतिहादियों बशमूल मुत्तहिदा अरब अमारात को निशाना बनाते हुए हमले किए और आबनाए हुरमुज़ को बंद कर दिया है। हुकाम ने यह भी बताया कि इससे कबल एक ड्रोन हमले के बायस अबू ज़हबी में एक न्यूक्लियर पावर स्टेशन के करीब आग लग गई, तहम किसी जानी नुकसान या ताबकारी की सतह पर असरअंदाज होने की कोई इत्तला नहीं मिली। मीडिया ऑफिस ने बताया कि अबू ज़हबी में हुकाम ने अलज़फ़रा के इलाके में बराका जौहरी पावर प्लांट के अंदरूनी अहाते से बाहर एक बिजली के जनरेटर में लगने वाली आग पर काबू पाया, जो कि एक ड्रोन हमले की वजह से लगी थी।
0: अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को खबरदार किया है कि तेहरान हुकूमत के लिए कार्रवाई करने का वक्त खत्म हो रहा है, बसूरत दीगर इनका कुछ नहीं बचेगा। इतवार को ट्रुथ सोशल से जारी करदा बयान में ट्रंप ने कहा है कि वक्त सबसे कीमती अंसर है। ट्रंप ने यह बयान ऐसे वक्त में सामने आया है जब तेहरान के खिलाफ जंगबंदी से मुतल्लिक अमरीकी शरायत मौजूद हैं, जिनमें जौहरी अफसूदगी की सरगर्मियों को रोकना, अफसूदा यूरेनियम को अमरीकी हुकाम को मुंतकिल करना और आबनाए हुरमुज़ को तजारती आमदोरफ्त के लिए दोबारा खोलना शामिल है।
1: मकामी मीडिया ने पीर को इतला दी है कि यमन में हौसी ग्रुप ने मुल्क के मशरकी मारब में एक अमरीकी MQ-9 रैपिड ड्रोन गिरा दिया है। डिफेंस लाइन प्लेटफॉर्म समेत मकामी मीडिया ने कहा कि रिहायशियों ने मारब शहर के ऊपर ज़ोरदार धमाकों की आवाज़ें सुनी और शहर के मगरब में इलाके से फिजाई दिफाई मिज़ाइल के लॉन्च होते देखा, जिसके बाद 2 धमाके सुनाई दिए गए। रिपोर्ट्स के मुताबिक सोशल मीडिया पर सरगर्म कारकुनों ने मुबैना तौर पर अमरीकी ड्रोन और मिज़ाइल के टुकड़ों के सहरा के इलाके में बिखरा होने पर मबनी एक फुटेज को गर्दिश करवाया है। डिफेंस लाइन ने कहा है कि गर्दिश में आने वाली तस्वीरों में कम से कम 2 AGM-114R9X निंजा मिज़ाइलों के बाकियात दिखाई दे रहे हैं, जो हेल फायर हवाई से ज़मीनी मिज़ाइल का एक तरमीम शुदा वर्जन है और दकीक हमलों के लिए डिज़ाइन किया गया है। प्लेटफॉर्म ने मजीद कहा कि इन तस्वीर से तस्दीक होती है कि मलबा एक अमरीकी MQ-9 रैपिड ड्रोन से मुतालिक है, जैसे अमरीका यमन में निगरानी और इंस्तदाद दहशतगर्दी के ऑपरेशंस के लिए इस्तेमाल करता है। इस वाक़े के बारे में हौसियों या अमरीकी फ़ौज की जानब से कोई तबसरा मौसूल नहीं हुआ है।
0: इसराइल ने इराक के मगरबी सहरा में ईरान के खिलाफ कार्रवाइयों की मदद के लिए खुफिया अड्डे कायम किए हैं। रोजनामा न्यूयॉर्क टाइम्स ने जारी करदा खबर में इराकी और इलाकाई हुकाम का हवाला देते हुए कहा है कि हाल ही में मंजरियाम पर आने वाला एक अड्डा इन 2 खुफिया तनसीबात में से एक है, जो एक साल से ज्यादा अरसे के दौरान वक्फे वक्फे से इराक के अंदर इसराइल के जेर इस्तेमाल रहे हैं। हुकाम के बकौल इन अड्डों को फजाई इमदाद, ईंधन भराई और तिब्बी खिदमात के लिए इस्तेमाल किया गया और बाद अजां जून 2025 में ईरान के खिलाफ 12 रोजा जंग के दौरान भी इनका किरदार रहा। इनमें से एक अड्डा इस वक्त सामने आया जब इराकी चरवाहे अवाद अल शमरा ने मार्च में अल नकीब के करीब गैर मामूली फौजी सरगर्मी देखी। उसने हेलीकॉप्टरों खैमे और बाजार आरसी लैंडिंग पट्टी देखने पर मुकामी हुकाम को इत्तला दी। रिपोर्ट के मुताबिक बाद अज़ां अल शमरा की लाश मिली, जबकि इलाके की तफ्तीश के लिए भेजे गए इराकी दस्ते पर भी फायरिंग हुई, जिसके नतीजे में 1 सिपाही हलाक और 2 जख्मी हो गए।
1: फलस्तीनी कैदियों को फांसी की इजाज़त देने वाला इसराइली कानून गुज़िश्ता रोज से नाफिजुल अमल हो गया है। रोजनमदी टाइम्स ऑफ इसराइल के मुताबिक इसराइली फौज की मरकजी कमान के इलाकाई कमांडर मेजर जनरल आवली ब्लाथ ने मकबूजा मगरबी किनारे में फांसी के कानून के नफाज के लिए ज़रूरी फौजी हुक्मनामे पर दस्तखत कर दिए हैं। फौजी हुक्म के तहत इसराइली हलाकतों से मुतालिका मुकदमात की समाअत करने वाली अदालतें उम्र कैद की इजाज़त देने वाले खसूसी हालात की अदम मौजूदगी में सजाए मौत को वाहिद काबिल इतलाक सजा के तौर पर सुनाने की पाबंद होंगी। इसराइली अखबार हारेट्स की खबर में कहा गया है कि कानून की जबान तकरीबन मुकम्मल तौर पर फलस्तीनियों को हदफ बनाने के अंदाज में तैयार की गई है। खबर के मुताबिक कानून में शामिल नजरियाती सबूत की शरायत की वजह से इस कानून का इंतहा पसंद यहूदी हमला आवरों पर इतलाक मुश्किल ही नहीं तकरीबन नामुमकिन है। واضح رہے کہ انسانی حقوق کی فلسطینی اور اسرائیلی تنظیموں کے اعداد و شمار کے مطابق اس وقت اسرائیلی جیلوں میں 350 بچوں اور 73 خواتین سمیت 9600 سے زائد فلسطینی

0: कैसा मुतहरक ढांचा कायम किया गया है जो ज्यादा तेजी से फैसले कर सकता है।
1: और अमरीकी रियासत आइडाहो में दो अमरीकी जंगी तैयारे आपस में टकरा गए। मकामी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रियासत आइडाहो में E/A-18G ग्रॉलर टीम के दो तैयारे माउंटेन होम एयरफोर्स बेस में बरोज इतवार होने वाले गन फाइटर एयर शो के दौरान हादसे का शिकार हुए। हादसे से कुछ ही देर बाद एक मुबसर ने मजमे को बताया कि अमरीकी बहरिया के चारों पायलट महफूज हैं। तमाशाइयों की जानिब से बनाए गए एक वीडियो में दोनों जेट तैयारों को टकराते हुए और हादसे के बाद फिजा से चार पैराशूटों को उतरते देखा जा सकता है। फिजाई मुजाहरे के मेज़बान ने कहा कि हमारे पास चार सही सलामत पैराशूट थे। अमला बर वक्त इजेक्ट करने में कामयाब रहा। वो धुएं की जगह से 1 मील जुनूब में मौजूद हैं। पैराशूट ज़मीन पर उतर चुके हैं। हुकाम ने इस वाक़े को फिजा में तसादम करार दिया है। वाक़े की तहकीकात जारी हैं और इस दौरान फजाइया के अड्डे को बंद कर दिया गया है। इसके साथ ही सदाए तुर्की से उर्दू में खबरें ख़त्म हुई।
2: सदाए तुर्की कल की तरह आज भी आपके संग संग।

एक किस कदर गहराई तक रचा बसा हुआ था। यहाँ मौत दुनियावी इख्तिताम नहीं है, इसके बिल्कुल बरक्स आसमान की अब्दी और दायरवी गर्दिश में उस अजीम हिंसी तनासुब में शामिल हो जाना है। अलजसरी और आहलात एक ही अहद के दो मुख्तलिफ जाविया नजर की नुमाइंदगी करते हैं। एक ने डिजाइन में हरकत को इस्तेमाल किया और दूसरे ने पत्थर में सुकून और सबात को। एक वक्त को नापने का मंसूबा बनाता है, दूसरा अब्दियत की तरफ इशारा करता है। एक में कानकी ख्वाब था, दूसरा ठोस हकीकत, मगर दोनों ही फल्की इल्म का इजहार थे। 13वीं सदी के अनातोलिया में फल्की इल्म अब महज हिसाब व किताब का मैदान नहीं रहा था, वो ऐसा इल्म बन चुका था जिसे डिजाइन किया जा सकता था और पत्थर पर कंधा किया जा सकता था। दियारबकर में एक इंजीनियर ने मैकेनिकी ख्वाब तख्लीक किए, आहलात में उस्तादों ने गर्दिश कायनात को पत्थर पर नक्श कर दिया। ये दोनों दरअसल एक ही इल्म का मुख्तलिफ जुबानों में इजहार था। नसर इल्म एक तरफ इंजीनियरिंग के ख्वाबों में ढला और दूसरी तरफ सकाफती इजहार की सूरत इख्तियार कर गया। आसमान ने कभी डिजाइन के खाकों में और कभी पत्थर की जुबान में गुफ्तगू की और अनातोलिया वो सरजमीन बन गए जहाँ ये दोनों जुबानें एक साथ जिंदा रहीं। समय इसके साथ ही हमारे आज के प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ जाता है। अपने मेज़बान मिसबा शाहीन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। अनातोलिया के शाहकार आसमानी कहानियाँ।